0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: Expanded commercial ties.
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की तीन दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े पांचवें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नासिक अदालत में विशेष जांच दल ने

0: सीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चे सोलापुर केंद्र आहे। सकाळचे 6:05 झाले तथा मंगल प्रभात हा भक्तिगीतांचा कार्यक्रम। मंगल प्रभात या कार्यक्रमास सुरुवातीला आपण ऐकूयात रमेश अणावकर यांची भोपाळी आशा भोसले यांच्या स्वरात। संगीत आहे वसंत प्रभू यांचं।

0: शिरीष गोपाल देशपांडे यांची रचना आता आपण ऐकली. संगीत दिलं होतं श्रीधर फडके यांनी. याबरोबरच भावधारा हा मराठी सुगम संगीताचा कार्यक्रम आम्ही समाप्त करत आहोत. आकाशवाणी सोलापूर सकाळचे 8 वाजतायत. आता समाचार प्रभात आम्ही दिल्ली केंद्रावरून सहक्षेपित करत आहोत.
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है.
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है. भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं. आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
3: हर घर सूर्य घर.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम. विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी. स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे. महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी. हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल. मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की. और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता. अब समाचार विस्तार से. विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे. विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे.
5: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी. बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे. स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा. बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी. सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार.
4: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी. श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे. प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की

0: बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
2: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: के लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ

0: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरों मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
1: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ते ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है।

0: केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक पीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आम्ही आपल्याशी बोलत आहोत आकाशवाणीच्या सोलापूर केंद्रावरून। सकाळी 8:15 झाली आहेत।
3: आई, अधिक महिन्यासाठी दुसरं तिसरं काही घेऊ नको, फक्त साडी हवी, ती देखील फक्त धूत सारीज मधीलच। अधिक महिन्याचा आनंद साजरा करण्यासाठी श्री धूत सारीज, चाटी गल्ली सोलापूर।
4: आजच्या धकाधकीच्या जीवनात मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्य जपण्यासाठी योगा अत्यंत आवश्यक आहे।
5: म्हणूनच पुरडे कन्स्ट्रक्शन्स आपल्यासाठी घेऊन आले आहेत मोफत योगा शिबिर।
4: अनुभवी योगाचार्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे शिबिर 25 ते 30 मे सकाळी 6 ते 7:30 या वेळेत होईल।
5: तरी सर्वांनी याचा नक्की लाभ घ्यावा, जागा मर्यादित असल्याने पूर्व नोंदणी आवश्यक आहे।
6: पुरडे हाइट्स क्लब हाऊस, गणेश नगर, राजस्व नगर जवळ, विजापूर रोड, सोलापूर। संपर्क 90 28 0 38 555।
7: शिंगवी ज्वेलर्स, लग्न सराई आणि येणारा अधिक महिना म्हणजे वधू आणि वराचे दागिने, त्यासोबतच आईचं स्वप्न, लेकीची हौस आणि जावयाला भेट, या गोष्टी आनंदाने साध्य करायच्या तर पूर्वीपासून असणाऱ्या सराफ बाजारातील शिंगवी ज्वेलर्स मध्ये जायलाच हवं।
8: दागिन्यातील कलाकुसर, विविधता, नाविन्य, कमीत कमी मजुरी आणि आपुलकीची सेवा, त्यामुळं पिढ्यान पिढ्यांची विश्वास जपणारी जुनी पिढी।
7: शिंगवी ज्वेलर्स, सराफ बाजार, मंगळवार पेठ, सोलापूर, आणि सहगामिनी, महावीर चौक, होडगी रोड, सोलापूर।
9: ज्ञान, शिस्त आणि संस्कार यांचा त्रिवेणी संगम म्हणजेच
10: श्रीकृष्ण गुरुकुल।
11: सकस आहार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, स्वच्छ आणि सुंदर वसतिगृह,
9: विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची, निवासाची आणि जेवणाची उत्तम सोय एकाच छताखाली।
11: पहाटे 5 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत अतिशय शिस्तबद्ध दिनचर्या।
9: संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक प्रमोद शिवाजी अवताडे सर यांचं श्रीकृष्ण गुरुकुल।
10: जिथे सुरक्षित मूल, तेच आपलं श्रीकृष्ण गुरुकुल।
11: वाघोलीवाडी, तालुका मोहोळ, जिल्हा सोलापूर। संपर्क 72 76 73 73 52।
12: किडनी स्टोन, मुतखडा, युरेट्रॅक भरड जलद परिणाम करतं, लवकर आराम देतं, फक्त ऑनलाइन उपलब्ध। ऑर्डर आणि चौकशीसाठी 99 606 55 381।
2: श्रोतेहो, आता ऐकूयात साठेज ऑर्थो स्पाइन केअर सेंटर यांचा ग्राहक केंद्रित प्रायोजित कार्यक्रम।
13: श्रोतेहो नमस्कार। साठेज ऑर्थो स्पाइन केअर सेंटर यांच्या ग्राहक केंद्रित प्रायोजित कार्यक्रमात मी अभिराम सराफ सर्व श्रोत्यांचं हार्दिक स्वागत करतोय। सोलापुरातील सुप्रसिद्ध एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजनू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

0: तुझे।
1: दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरू के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

फिल्मों में मजरू साहब के उल्लेखनीय योगदान के लिए 1993 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।

24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जागने।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रख

0: हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।

0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ। जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आपले रिझल्ट तर आला आहे पण आपली चॅम्पियन नाही आली अजून.
1: बिल भरायच्या आधी तरी येईल ना.
0: सगळं काय चाललंय?
2: बिल बनतंय.
0: चल तुझं कार्ड दे, पिन दे.
3: आरबीआय सांगते आहे की आपला पिन, ओटीपी, सीवीवी किंवा इंटरनेट बँकिंग पासवर्ड कोणालाही देऊ नका. ऑनलाईन बँकिंग फक्त आपल्याच कम्प्युटर, मोबाईल आणि सिक्युअर नेटवर्क वरून करा. ही खाण्याची चॅम्पियनशिप होती का? आरबीआय सांगते, जाणकार बना, सतर्क रहा.
4: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान.
5: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण.
4: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
5: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
4: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध. डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें. न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.
6: श्रुति हो बांसुरी, तबला, दिलरुबा, सारंगी, बोंगो, कोंगो, ट्रम्पेट, सॅक्सोफोन आदि वाद्यांचा उत्कृष्ट मेळ, त्यातून निर्माण होणारी उत्तम सुरावट सहज ओठावर येतील असं चालेल. पार्श्वगायकांच्या आवाजाचा योग्य वापर ही राजेश रोशन यांच्या संगीताची वैशिष्ट्ये.

धक धक धक धक धक मजकारी जकरे या धक धक धक नको पक समझ कड़ लो नटक धस तुझा लागल जीव।

0: धक मन करी जकरत या धक धक धक
1: थोड़ा मा झकर भगर चिन्हानी धमक
0: होए जास तुझा लागले जीव मजा जड़ले इसका ता कोमड़ा करी आ, आ, आ।

भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। तो अपने रेडियो सेट को श्रोताओ जरा करीब लाइए, सुनिए कि आपको पुकारता है विविध भारती पर प्यारे प्यारे गीतों का कार्यक्रम सुरीला सफर, जहां होती हैं हमारी इबारतें और आपकी बातें, थोड़ी थोड़ी सी तलखी, कुछ कुछ प्यार, थोड़ा तकरार और बेशक हम और आप मिलकर तय करते हैं सुरीला सफर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में। साथियों, एक मौसम दिल का भी होता है, इसी की बात हमने आज की इबारत में की है। तो आपके लिए पढ़ देते हैं आज की इबारत। वैसे हमारे जो फेसबुक के साथी हैं वो तो देख ही चुके हैं कि आज की क्या इबारत है, और जो साथी नए जुड़ने वाले हैं उनसे हम बता दें कि आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai और इस पते पर भेज सकते हैं अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। और अब ये है आज की इबारत। दिल का मौसम खुशगवार हुआ और कहने लगा, मेरे दिल जरा लहरा के चल। आशिकाना मौसम कहता है, इनसे शायद पहले सपनों में मिले थे। ये बिंदिया जब जब चमकती है, दिल से एक आवाज आती है कि ये तो तस्वीर है और तस्वीर में वो बात कहाँ। कायनात को देखो तो जीने की तमन्ना जाग उठती है। काश कुदरत भी बोलती और कहती कि हमें भी तुमसे कितना प्यार है। खोलती ऐसे राज़ी दिल जिन्हें छुपाना मुश्किल होता है। ऐसे में मुमकिन है कोई खफा हो जाए, फिर मिलने के बहाने कुछ सूझे और घर से निकल पड़े। दीवाना बनकर ढूंढा उनको जो बादलों की तरह बेकरार कर जाते हैं और कहते हैं अच्छा तो चलते हैं। साथियों, एक मौसम दिल का भी होता है जो जरूरी नहीं कि इस मौसम के साथ साथ चले। ये तो दिल का मौसम है, कभी खुशियों में लहराता है तो कभी रूठों को मनाता है, मन के फूल खिलाता है और सबको प्यार सिखाता है। तो चलिए चलते हैं आज इस अलबेले सफर पर, देखते हैं कि इस सफर पर आज किस किस से मुलाकात होती है। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

एक समय ऐसा था श्रोताओं, जब साइकिल पर खूब सवारी की जाती थी और देखा भी नहीं जाता था कि भाई फासला कितना है, यानी फासला थोड़ा भी हो सकता था, ज्यादा भी हो सकता था। तो साइकिल के बारे में आपका क्या कहना है, साइकिल से जुड़ी हुई बातें अगर आप चाहें तो हमसे जरूर साझा करें। आप सुन रहे थे जॉय मुखर्जी पर फिल्माया ये गीत, जो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। इशारा फिल्म का ये गीत था, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी की तर्ज थी, मुकेश का गाया ये गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आज खुशगवार मौसम में प्रकृति की खूबसूरती के दिलों की बात होने वाली है। ये बिल्कुल सही है कि जब दिल खुशगवार होता है तो हमारे आसपास की प्रकृति जैसे हरी भरी वादियों, कलकल करती अविरल नदियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते झरनों की आवाजें दिल को आशिकाना बना देती हैं, जिससे हर चीज में खूबसूरती नजर आने लगती है। वैसे अगर कहा जाए तो सुंदरता देखने वाली चीज में नहीं बल्कि देखने वाले वालों के मन में होती है। इसलिए तो कहा गया है कि अगर मन चंगा हो तो कठौती में भी गंगा बसती है। यही कारण है कि उदास मौसम के विपरीत खिले हुए मौसम में हर चीज दिल को लुभाती है। आज की इबारत में ढूंढते रह जाओगे वाली बात नजर आती नहीं आ रही। आपने इशारों में सब कुछ लिख दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने कुछ गीत भी सुझाए हैं। वैसे हमारे सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम को देते हैं। और हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि दिल, मौसम, आशिकाना, बिंदिया, आवाज, तस्वीर, शायद, कायनात, तरन्नुम, तमन्ना, कुदरत, प्यार, राज, मुश्किल, मुमकिन, खफा, बहाना, घर, दीवाना, बादल, बेकरार, अच्छा, चलते और कुछ गीतों की सूची भी इन्होंने दी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सभी श्रोता मित्रों को प्रणाम, आइए चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में कुछ रोमांटिक, कुछ ठंडे गीतों से इस दोपहरी को यादगार बनाते हैं। वैसे तो सूर्य देवता अपनी तपिश से सारी दुनिया को जलाने की ठान कर बैठे हैं, हमारी विविध भारती ने भी ठान रखा है अपने गीतों की ठंडक से सबका मनोरंजन करने का। बस इंतजार है 1 बजे का। जी हाँ, तो कार्यक्रम शुरू हो चुका है और अगर आप नहीं सुन रहे तो बस फटाफट आ जाइए रेडियो के पास और कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है। और एक और श्रोता लिखती हैं, आपकी जो पंक्तियां प्रेम के उस अनंत सफर का दर्पण है जहां हर मौसम एक नई दास्तान सुनाता है, आंखों में सजे सपने, बिंदिया की चमक और कायनात की खूबसूरती मिलकर एक ऐसी गूंज पैदा करते हैं जो सीधे दिल को छू लेती है, बादलों की तरह बेकरार करके जाने। और अच्छा तो हम चलते हैं का वो आखिरी मोड़ दिल को एक खूबसूरत की कसक और उम्मीद से भर देता है। ये एहसास दिलाता है कि भले ही दूरियां हों लेकिन इंतजार का ये सफर अपने आप में कितना हसीन है। जी हाँ, और बिल्कुल इस तरह हसीन है दिल का सफर, जब मन होता है दिल किसी और भी निकल लेता है, जहाँ दिल को सुकून मिलता है। और ऐसा ही सफर आज कुछ हम तय कर रहे हैं।

ये जो आखिर में आप सुन रहे थे संगीत, ये पंछी की उड़ान यानी उसके पंख की आवाज थी श्रोताओं। और ऐसा शायद कभी आपके साथ भी हुआ हो कि आपने भी टेंट में रात बिताई हो या दिन बिताया हो या कहीं गए हो, खासकर अगर आपने पहाड़ों की सैर की है तो आप हमें ऐसे अनुभव बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं। हमारी एक श्रोता लिखती है कि खुशनुमा मौसम मन को सुकून देता है, हल्की ठंडी हवा, खिलते फूल और बादलों की छांव दिल को नई उमंग से भर देती है। ऐसे मौसम में पुरानी यादें और दिल में बसी कोई खास तस्वीर बार बार मुस्कुरा उठती है। दिल में बसी तस्वीर केवल किसी चेहरे की नहीं होती बल्कि उन प्यारे लम्हों की भी होती है जो जिंदगी को खास बना देते हैं। प्रकृति का सुंदर रूप इंसान को

जीवन की भागदौड़ से कुछ पल राहत के देता है और मन को शांति का एहसास कराता है और खुशगवार मौसम उन यादों को और भी खूबसूरत बना देता है। जी हाँ, और तभी तो हम ऐसे मौसम में खास प्रकृति की ओर चल देते हैं और तब हम ये नहीं देखते कि मौसम कौन सा है, क्योंकि हमारे दिल का मौसम जो कह रहा होता है कि भाई अब चलिए कहीं और चलें। एक हमारी और श्रोता बताती हैं, जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा के पास एक साइकिल थी। उसे साइकिल पर बैठकर हमारे पापा सभी को स्कूल छोड़ देते थे। मुझे और मेरे दो भाइयों को मेरे पापा साइकिल पर ले जाया करते थे और पूरी फैमिली पांच जने साइकिल पर ही जाया करते थे, कहीं भी जाते थे। और फिर जब मैं 12वीं कक्षा में आई तब मुझे स्कूल की साइकिल मिली थी, तब मैं साइकिल चलाया इन्होंने और इन्हें बहुत खुशी हुई। क्या बात है। एक और श्रोता लिखती हैं कि जब पैर पैडल पर होते हैं और ठंडी हवा चेहरे को छूती है तो ऐसा लगता है कि मानो हम वक्त से थोड़ा आगे निकल आए हैं। साइकिल की सवारी सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह जाने का जरिया मात्र नहीं, बल्कि ये अपने आप में एक एहसास है। बचपन की पहली आजादी के एहसास से लेकर आधुनिक दौर में पर्यावरण को बचाने के आंदोलन तक साइकिल हमेशा से इंसानी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा रही है। एक और श्रोता लिखती है, सुंदरता आईने में नहीं इंसान के स्वभाव में दिखाई देती है। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों न हो, अगर दिल खूबसूरत न हो तो सुंदरता अधूरी लगती है। असल खूबसूरती मुस्कान, सच्चाई और अच्छे व्यवहार में छुपी होती है, जो दूसरों के दिलों में जगह बना लेती है वही सच में सबसे सुंदर होता है। सुंदरता रंग या चेहरे से नहीं, इंसान की सोच और उसकी सादगी से पहचानी जाती है। और कुछ लोग साधारण दिखकर भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि उनकी रूह बहुत सुंदर होती है। जी हाँ, जब रूह सुंदर होती है तो ज्यादातर देखने में ऐसा आता है कि मौसम चाहे जो भी हो, लोग चाहे जैसे भी मिले, बातें चाहे कोई भी कहीं जाए, लेकिन सुंदर लगता है और सब कुछ अच्छा लगता है। मन अच्छा है तो सब अच्छा लगता है और यही है दिल का मौसम। एक और श्रोता लिखते हैं, वाकई में दिल का मौसम खुशगवार हुआ था जब मैं स्वयं परिवार सहित जून 2024 में कश्मीर गया था। मौसम तो आशिकाना था ही और धर्मपत्नी की बिंदिया जब चमकती थी और मेरे दिल की आवाज भी लहराकर कहने लगती, हर पल मजबूर था कि कश्मीर कुदरत का नायाब करिश्मा है। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। जी हाँ, अगर फिरदौस बर्रोए ज़मीं अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो।

इस गीत के संगीतकार आपको बताने हैं श्रोताओं, और पाकीज़ा फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था, मीना कुमारी पर फिल्म आया गया, उस गीत के संगीतकार अगर आप बता दें तो क्या ही बात है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, क्या बात है, आपने जिस खूबसूरती से पुराने सदाबहार गीतों की पंक्तियां, उनके पंक्तियों, उनके भावों और उनके मुखड़ों को एक धागे में पिरोया है, उसे पढ़कर दिल सच में बाग बाग हो गया। ये सिर्फ एक पैराग्राफ नहीं बल्कि हिन्दी सिनेमा के सुनहरे दौर गुलजन एरा का एक म्यूजिकल सफरनामा। आपके इस खूबसूरत पैराग्राफ को खंगालने के बाद आज के मुख्य शब्द जो हैं और उन पर आधारित सदाबहार गाने कुछ इस तरह निकल कर आते हैं। और बहुत सारे गीतों की बात इन्होंने लिखी है, उसमें से बहुत सारे गीत जो हैं वो मिलते भी हैं। जी हाँ, इनमें ये गीत भी है, मौसम है आशिकाना। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में खूब साइकिल चलाई, बहुत बार साइकिल से गिरा, चोट खाई, पर साइकिल की सवारी नहीं छोड़ी, अब साइकिल की जगह स्कूटर ने ले ली है। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली साइकिल मुझे 1974 में मिली, जब कक्षा 8वीं में था, वो भी सेकंड हैंड 75 रुपए में खरीदी गई थी। जी हाँ श्रोताओं, और आगे लिखते हैं कि उस समय लगा जैसे मुझे हवाई जहाज मिल गया हो, इधर उधर बहुत चक्कर लगाया करता था। नई चीजें जब आती हैं तो कुछ ऐसा ही होता है, और खासकर जो साइकिल थी उसका क्रेज तो कुछ अलग ही था। एक और श्रोता लिखते हैं कि इस गीत में कलाकार जॉय मुखर्जी, यानी पहले गीत की इन्होंने बात करी है, मुखर्जी साइकिल पर सवार हैं, और जिन लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमत ज्यादा लग रही है वो साइकिल पर सवार हो सकते हैं। जी हाँ, जहां तक कीमत की बात है, वो प्रकृति से तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। साइकिल पर सवारी प्रकृति को पूरी तरह से महफूज रखती है, तो अक्सर जब हम साइकिल चलाते हैं तो इस बात का जरूर हमें ख्याल रखना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि सपनों की दुनिया और खुशगवार मौसम में प्रीतम से मिलन अत्यंत भावपूर्ण मिलन श्रृंगार होता है, जहां प्रकृति और प्रेम का अद्भुत सामंजस्य होता है। ठंडी हवाओं का चलना, बादलों का अदखेलियां करना, एक संगीतमय मादकता वातावरण में घुली सी जाती है। प्रिय का स्वप्न में आना, प्रेमियों के मन में विरह की पीड़ा को मिटाकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति से भर देता है। एक और श्रोता लिखते हैं, कुछ गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे दिल को सुकून की बारिश मिल गई हो, कुछ गाने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और दिल में ढेर सारी शांति छोड़ देते हैं, कुछ धुनें सुनते ही पुरानी यादें धीरे से सामने आ बैठती हैं, ऐसे गीत सुनकर लगता है जैसे कोई बहुत अपना पास बैठा हो, कुछ गाने इतने अच्छे लगते हैं कि उन्हें बार बार सुनने का मन करता है, जैसे नीले गगन के तले जिस पथ पर चला, छोड़ दे सारी दुनिया, और ये सारे गीत इन्होंने लिखे हैं, जो गीत इन्होंने अंदाज लगाए। वैसे हमारे आज जो श्रोता लोगों ने गीतों की जो लिस्ट भेजी है वो जबरदस्त है, और उसमें बहुत सारे गीत जो हैं आज के कार्यक्रम से मिलते हैं।

श्रोताओं, आप फिल्म पहचाने और संगीतकार बताएं, और ये भी बताएं कि आपको कभी ऐसा लगा कि किसी खास जगह को ढूंढने में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ी।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, राजस्थान तो नहीं गई लेकिन अभी हाल में गुजरात के दीव में हमने ऊंट की सवारी की, थोड़ा डर भी लगा जब वो खड़ा होता और फिर बैठता है। एक और श्रोता लिखते हैं, फिल्म गाइड का गीत मेरी लिस्ट का पांचवा गीत है। एक लिखते हैं कि चित्तौड़गढ़ फिल्म में किले में फिल्माया गया ये गीत है। एक और श्रोता ने लिखा है, बचपन के दिनों में हमारे पास ऊंट होता था जो कुएं से पानी निकालने का काम आता था और हम उस पर बैठकर घर से खेतों में और वहां से फिर घर आते थे। एक और श्रोता लिखती हैं कि हाँ, मेरा जाने का मन तो करता है राजस्थान, कभी शायद जा पाऊं। एक और श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर और पुष्कर में हुआ था गाइड फिल्म का फिल्मांकन गीत का।

0: मित्रों, हम सभी अपनी जिंदगी में एक ऐसी जगह बना लेते हैं जहां हमें डर नहीं लगता, जहां सब कुछ आसान लगता है, जहां कोई जोखिम नहीं होता। उसी जगह को हम कंफर्ट जोन कहते हैं। लेकिन सच ये है कि जहां आराम शुरू होता है वहां तरक्की रुक जाती है। जरा सोचिए, अगर एक छात्र सिर्फ वही पढ़े जो उसे आसान लगता है तो वो कभी नई चीजें नहीं सीख पाएगा। अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ आसान अभ्यास करे तो वो कभी महान खिलाड़ी नहीं बन सकता। अगर कोई इंसान हमेशा डर के कारण नए अवसर छोड़ता रहे तो वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। याद रहे, सफलता, आत्मविश्वास और बड़े सपने हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलते हैं।
1: सुनो तो जरा, हमको है ये कहना, वक्त है क्या?

अगर जिंदगी में हमें कुछ बड़ा हासिल करना है तो डर और आराम दोनों को छोड़ना पड़ेगा। बेशक कंफर्ट जोन एक खूबसूरत जगह है, लेकिन वहां कभी ग्रोथ नहीं होती। तमाम उदाहरण हैं सफल लोगों के, जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही सफलता हासिल की है, अपनी काबिलियत से देश दुनिया में इतिहास रचा है, संघर्ष किया है। अगर ये लोग डर जाते, मेहनत से बचते या आराम चुनते, तो शायद आज पूरी दुनिया इन्हें नहीं जानती। सच तो ये है कि डर हमेशा कंफर्ट जोन के दरवाजे पर खड़ा रहता है। हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर हम असफल हो गए तो, अगर हमसे गलती हो गई तो। लेकिन हमें याद रखना होगा, गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। असफलता बुरी नहीं होती, कोशिश छोड़ देना बुरा होता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें गिरना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा और खुद को बदलना भी पड़ेगा। अगर उड़ना है ऊंचा, तो घोंसले की आरामदायक दुनिया छोड़नी ही पड़ेगी।

मित्रों, जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियां हमेशा डर के दूसरी तरफ मिलती हैं। कहते हैं आराम इंसान को कमजोर बना देता है और संघर्ष इंसान को महान बनाता है। सफलता कभी भी आरामदायक बिस्तर पर लेटे हुए लोगों को नहीं मिलती। सफलता उन्हें मिलती है जो रातों को जागते हैं, गिरते हैं, हारते हैं, लेकिन फिर उठकर लड़ते हैं। हमें खुद को पहचानना होगा और अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से दौड़ना होगा, क्योंकि जो अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है दुनिया पर वही राज करता है। अगर तूफानों से लड़ने का जुनून हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। साथियों, जिंदगी में बदलाव तभी आता है जब हम खुद को चुनौती देते हैं। एक बीज अगर मिट्टी के अंदर सुरक्षित रहना चाहे तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। पेड़ बनने के लिए उसे मिट्टी फोड़नी पड़ती है, अंधेरे से बाहर आना पड़ता है, बारिश और धूप सहनी पड़ती है। उसी तरह इंसान को भी संघर्ष से गुजरना ही पड़ता है। तो आप भी बड़े सपने देखिए, खूब मेहनत कीजिए, हिम्मत के साथ डर का सामना कीजिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाइए।

साथियों, जिंदगी आसान रास्तों से नहीं, चुनौतियों से महान बनती है। इसी के साथ संपन्न होती है आज की त्रिवेणी।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
4: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है।

0: साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
1: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
2: We want peace and stability.
0: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
2: These would be the principles with which we would approach that region.
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमरीका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमरीकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र

0: में मछली पालन, पशु पालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। यह समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। यह धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानशी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंट

0: को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के युकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल विनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम सदाबहार नवमी।

0: नहीं है वल्ला जवाब।
1: पेइंग गेस्ट फिल्म में किशोर कुमार की आवाज आपने सुनी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
2: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की।

0: श्रृंगार सुरू का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: तुम इसको खेल समझे हो, मगर एक दिन दिखा देंगे।

0: मोहब्बत इसको कहते हैं स्विंग का गीत था, मुकेश और आशा भोसले का गाया, मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला खयाम ने।
1: तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन

एक बार मुस्कुरा दो इस फिल्म में आशा भोसले मुकेश की आवाजें आपने सुनी, एस एच बिहारी के बोलों को सुर में ढाला ओपी नैयर ने। इस गीत को सुनना चाहा दारागंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश से गंगाराम पांडे, तीर्थराज पांडे, दिलीप शर्मा, ध्रुवराज पांडे और इनके बहुत से साथी। इसी गीत को सुनना चाहा सिकंदर अली खान, बदुद्दीन शमसुद्दीन की बाड़ी के पास से, और ये पत्र आया बीकानेर राजस्थान से। एक और श्रोता ने इस गीत की फरमाइश की जिला अमरावती से, प्रवीण नगर से। ये हैं चंदू हातोले, सीमा हातोले, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, बीपी गौतम, सरिता, अनन्या, कुश, रिंकू टिंकू, रीना, ऐश्वर्या, श्रेय, आप सभी की फरमाइश थी।

चोर मचाए शोर इस फिल्म का दो गाना था मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। गणेश कुमार की फरमाइश है ये पुणे से और भरत यादव काजल शर्मा विकास सक्सेना इनकी फरमाइश है बदायूं उत्तर प्रदेश से। और ये हमारे श्रोता हैं तहसील तिलहारा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार आड़िया, भारती पारस पायल, श्वेता और उर्वीबेन आड़िया।

ये गीत आप सुन रहे थे द ट्रेन फिल्म से, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी और इस गीत की फरमाइश की हंडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी और इसी गीत की फरमाइश की लीलाबेन, स्मिताबेन, भारती, निधि, सेजल, मनाली ने। ये हमारे श्रोता थे तेलहारा महाराष्ट्र से। और अब आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

0: बैठते हैं खिड़की के पास।
1: वहाँ क्यों?
0: अरे भाई आज शनिवार की शाम है, कोई डिनर के लिए जाएगा, कोई लोकल गार्जियन के यहाँ, कोई पिक्चर जाएगा और कोई शॉपिंग के लिए, तरह तरह की ड्रेसेस और साज सज्जा देखने को मिलेगी। आया जी।
2: हाँ बिटिया,
0: हमारी चाय यही देने लिएगा।
2: लाई चाय बिटिया,
0: चल
3: बैठ। सुनो, अरे यार तुम्हारी बकबक से तो मेरा सिर दर्द करने लगता है।
0: तो ले चाय पी, एकदम गर्म है।
4: अरे सुमी जरा रेशमा का जूड़ा तो देख।
3: कहा जूड़ा? अरे ये तो एकदम अजंता की मूर्तियों जैसा केश विन्यास है।
0: वो दिन तू
3: कहाँ?
0: तूने शायद शैम्पू किया है। वाह कितने खूबसूरत बाल है।
3: एकदम।

0: वर्षा की घनघोर घटाओं की तरह।
1: सुमन सुमन वो देख, वो देख सुमन देखो कहाँ, अरे कितनी अच्छी लग रही है
2: सच में।
1: सफेद शरारा सूट और हवा में लहराती सफेद चुन्नी, क्या बात है।
0: अरे यार ऐसे लग रहा है जैसे कोई हंसनी तैरती हुई चली जा रही है।
1: पर तंग आ गई मैं तुम्हारी कविता से, न कोई थ्रिल है न कोई एक्साइटमेंट
0: है। क्यों नहीं, अरे तुम तो हो थ्रिल एक्साइटमेंट का जीता जागता रूप, गोरी गोरी दुबली पतली एक प्यारी सी बालिका, जैसे
1: कटनार की गली, यही कहेगी ना। ले समोसा खा,
0: गरम गरम खिला रहे हो।
1: हाँ तो फ्रेंड्स,
3: यस
1: मिस सुमी आपको अपनी एक नई कविता सुनाने जा रही है।
3: बिल्कुल वेलकम वेलकम।
1: ये कविता इन्होंने अपने प्रिय दोस्त चंदन के लिए लिखी है।
3: चंदन,
1: बस ये भी चंदन जैसी है। पर जरा सांप से बच कर है ना माय डियर फ्रेंड।
0: रीमा तू नहीं सुनेगी,
1: तो सुनिए आप सब इनकी नई रचना।
4: थ्री चीयर्स फॉर हावी कवित्री।
1: तो शुरू हो जाइए मिस सुमी।
0: अरे यार समोसा खाने दो।
1: कोई नखरा वखरा नहीं चलेगा, कम ऑन।
0: और रीमा अच्छा अच्छा तो सुन बस। खुशबू बिखेरता महकाता पवित्र करता नंदन, कितना प्यारा कितना सुंदर है ये वृक्ष चंदन। जी चाहता है इसे आँखों में आंज लूं, शब्दों में बांध लूं, मन में समेट लूं, कल्पना से संवार दूं, कर लूं वंदन है वृक्ष चंदन।
1: लो मेरी तो गाड़ी आ गई भाई, मैं तो चली। चलेगी समी?
0: आज नहीं, भैया आते होंगे, उनका इंतजार करूंगी।
1: ओके बाय बाय फ्रेंड
3: बाय।

0: अरे नमस्ते भाई साहब।
1: अरे तू रीमा, लगता है संगत का असर आ गया है। हाय हेलो नहीं, नमस्ते। आज वो तुम्हारी कबूतरी नहीं आई।
0: कबूतरी? व्हाट डू यू मीन? यू मीन सुमी? देखिए भाई साहब, आप मेरी दोस्त का अपमान कर रहे हैं। अरे थोड़ी भावुक है बस, बच्चों जैसी मासूम है। हंसती है तो सुरीले तार झंकृत होते हैं, बोलती है तो जैसे कोयल कुहकुटती है, और चलती है तो
1: लगता है कोई हाथी झूम झूम कर चल रहा है।
0: अच्छा भैया, फिर आपने उसकी बेइज्जती की?
1: अरे भाई गजगामनी कहा, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट।
0: अच्छा भाई, तो भाई आप उसकी इतनी बातें क्यों करते हैं? कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है?
1: चक्कर और उससे? अरे बाबा डर लगता है। आती है तो कहती है, डॉक्टर साहब एक नया गीत लिखा है सुनिए। क्या करूं तुम्हारी दोस्त है, झेलना पड़ता है उसे। लिखती है, कितना मोहक कितना सुंदर है इन फूलों का जीवन, हंसना खिलना और शर्माना, महकाना धरती का कड़कण।
0: अच्छा और क्या कहती है?
1: कहती है, खिलती कलियां झूमती लताएं, तपस्वी से चंदन वृक्ष, सब मुझे बहुत अपने लगते हैं। जिस दिन बाग में न जाऊं वे उदास हो जाते हैं।
0: और आप कहिए तो प्रपोज कर दूं?
1: नहीं रीमा, बहुत भोली है वो, अधखिली अनछुई ओस में नहाई पावन कली की तरह, जिसकी पलकों में न जाने कितने सपने हैं। मैं इंतजार करूंगा।
0: समझ गई भाई साहब, मौका देखकर मैं जरूर बात करूंगी। अभी तो वो भी मगन होगी अपने भैया के साथ।
2: स्वामी बिटिया जी, वो भैया जी आए हैं।
3: अरे भैया आप, घर में सब लोग ठीक तो हैं? और डैडी की तबीयत?
4: बहुत अच्छी, घर में सब लोग अच्छी तरह से। वो तुझे मेरा तार नहीं मिला था क्या?
3: तार वो तो नहीं मिला। खैर अब तो आप खुद ही आ गए हैं, बता दीजिए क्या लिखा था तार में।
4: यही कि रात की ट्रेन से हम लोगों का रिजर्वेशन है।
3: रिजर्वेशन?
4: हाँ, हमें आज ही बांदा जाना।
3: लेकिन क्यों, अभी तो मेरी छुट्टियों में एक महीना बाकी है और फिर मुझे परमिशन भी नहीं मिलेगी।
4: मैं तुम्हारी वार्डन से बात कर चुका हूँ, तुम जाकर अपनी पैकिंग कर लो, ठीक 8 बजे मैं टैक्सी लेकर आऊंगा।
3: लेकिन भैया अचानक ये सब क्या हो रहा है, मैं इतने दिन क्लासेस कैसे मिस करूंगी? साफ बताओ ना भैया क्या बात है।
4: तो सच कह दूं? तो सुन, पापा ने तेरे ब्याह की तारीख पक्की कर दी।
3: ब्याह?
4: इसी माह की 25 तारीख को तेरी शादी है, और इसीलिए मैं तुझे लेने आया।
3: ये तुम क्या कह रहे हो भैया? देखो

0: ये मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता।
1: ये मजाक नहीं सुमी, सच है। घर में मेहमान भी आने शुरू हो गए।
0: वाह भैया, मुझसे पूछा भी नहीं और सब कुछ तय कर लिया।
1: देख सुमी, परेशान मत हो, तू तो जानती है पापा रिटायर होने से पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेना चाहते हैं। अरे आखरी का रईस घराना है, लड़का मैकेनिकल इंजीनियर है, दो बार बाहर भी हुआ है।
0: ओ भैया
1: सब ठीक ही है,

0: तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उनके घर वालों से मिल चुका हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, और लड़के की बहन मंजू वो तो बहुत ही प्यारी। अच्छा सुन, मैं चलता हूँ, तू तैयार है ना?
1: सामान बांट लो, सब लाट साहब हैं, मुझसे बिना पूछे ही सब कुछ तय हो गया। कहते थे एमए कराएंगे, और अब भी अभी नहीं कर पाऊंगी। लड़का इंजीनियर है, अरे तो कोई और लड़की नहीं मिली, मेरा ही करियर खराब करना था। चल बेटा चढ़ जा सूली पर, एक खत तो लिख दूं रीमा को। प्यारी रीमा, तेरे चंदन वृक्ष को सर्प घेरने वाले हैं। मतलब मेरा ब्याह हो रहा है इसी 25 को, पहले से आ जाना, नहीं तो जिंदगी भर नहीं बोलूंगी और नहीं ब्याह करूंगी। सुनी
2: विजया जी, चलिए भैया जी आ गए हैं।

0: अरे सुमी सुमी, देख तेरी बारात आ गई। ए सुमी, मैं भी तेरा दूल्हा देखा।
1: नहीं रीमा, मुझे छोड़कर मत जा।
0: क्यों?
1: मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
0: अरे घबराहट कैसा? सभी का ब्याह होता है। अरे शीशे में एक बार अपनी छवि तो देख ले, बिल्कुल अप्सरा लग रही है।
1: छोड़ मुझे रीमा, शीशे में भी मुझे वही चंदन वृक्ष और उससे लिपटे हुए सांप दिखाई दे रहे हैं। मेरा क्या होगा रीमा?
0: सब बढ़िया होगा। अरे कुछ दिनों के लिए बस अपनी कविताएं भूल जा। अब तू एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रही है ना।
1: ठीक है,

0: मैं भी चलूं?
1: अरे बेटा इतनी जल्दी क्यों, शिवमी के आने तक रुक जाती बेटी।
0: नहीं अंकल, रुक तो जरूर जाती, पर आज का रिजर्वेशन है और भैया स्टेशन आएंगे।
1: अच्छा बेटी ये बताओ
0: अंकल,
1: शिवमी का दूल्हा तुम्हें कैसा लगा?
0: अंकल ये सब ब्याह से पहले पूछा जाता है, जो बिंद गया वही मोती। सुमी खुश रहे बस यही कामना है मेरी। अच्छा चलती हूँ, सुमी की यात्रा शुभ हो और वो अपनी एक नई जिंदगी में खो जाए।
1: हाँ।

0: भाभी घूंघट हटा दीजिए और पीछे टिक कर बैठिए। अरे अभी तो कई दिनों तक झुक कर बैठना होगा, है ना भैया? वैसे भाभी है बहुत खूबसूरत। भैया पापा की पसंद की दाद देनी पड़ेगी।
1: खूबसूरत है ये लड़की, वाह क्या कहना है, पारुल दीदी के पैरों की धूल भी नहीं है ये। इसे कह दो मंजू इसे आईएस बनना है, आईएस समझी?
0: जरूर बनेगी भैया, भला तुम्हारा कहना कौन टाल सकता है, है ना भाभी?
2: अरे ताई आंटी दीजिए ना, जोड़ी की आंटी तारे जोड़ी है।
0: आइए भाभी अब उधर बैठते हैं। आइए भैया
2: तुम भी चलो।
1: नहीं मैं आंगन में जा रहा हूँ भाभी ताई जी और बुआ जी के पास।
3: मुबारक हो लल्ला जी।
4: आई भैया दुल्हन है कि एकदम चांद का टुकड़ा,
2: किस्मत वाले हैं हमारे भी भैया।
0: अच्छी चाय पी लीजिए भैया।

0: चाय कीजिए।
1: क्या कहा? मैं थक गया हूँ, इतनी जरूरी मीटिंग बुला रखी है मैंने, ऑफिस का सारा काम पड़ा है, ये कितनी सारी फाइलें निपटानी है और तुम कहती हो मैं थक गया हूँ। ये चाय ले जाओ और उस लड़की को पिला दो जो मेरे कमरे में बैठी है।
0: वो भाभी है भैया, अभी परसों ही तो तुम्हारे साथ उनका ब्याह हुआ है, हम लोग ही तो उन्हें विदा करा कर लाए हैं। कितनी प्यारी है भाभी।
1: भाभी अच्छा मजाक है, किसी को भी सजा कर बैठा दिया और वो तुम्हारी भाभी हो गई। ये भी भाभी है, ये भी भाभी है कितनी सारी भाभियां हैं, चारों तरफ भाभी भाभी भाभी, वाह। लो लो चाय पियो, लो लो भाभी तुम भी पी लो, तुम भी पी लो, तुम भी पी लो।
2: अरे इसकी शादी क्यों कर दी गई? हे भगवान, अब बहू का क्या होगा? डॉक्टर ने कहा था चांद सी बहू, आते ही ग्रहण लग गया, अब क्या होगा?
3: अरे बंधी भी तो पागल के साथ।
1: क्या कहा? अरे मैं पागल हूँ? तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम भी पागल हो, तुम सब पागल हो, पागल हो, ये पागलों की बारात है, पागलों की। मैं पागल, मेरा मनवा पागल, पागल मेरी प्रीत रे। अरे ये मुझे क्या पहना दिया है? हार अंगूठी, ये लो ये लो ये लो, लूटो लूटो, पागल का ब्याह हुआ है, झूमो नाचो गाओ।
0: भैया भैया ये क्या कर रहे हो भैया? भाभी बुआ पकड़िए ने, मैं बाबू जी को बुलाती हूँ।
1: छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मुझे मुझे छोड़ दो छोड़ दो। देखो देखो मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो, तुम सब पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं
4: हूँ,
1: मैं पागल नहीं।
0: बाबूजी बाबूजी बाबूजी बाबूजी,
4: क्या है मंजू बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो?
0: भैया को फिर दौरा पड़ा है बाबूजी, अनशन बोल रहे हैं।
4: क्या कह रही?
0: कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, चाची बुआ सब उन्हें पकड़े हुए हैं।
4: घबरा मत बेटी, मैं अभी गाड़ी निकलवाता हूँ, उसे डॉक्टर के तुरंत ले जाना होगा। ऐसा कर, तू जल्दी डॉक्टर वर्मा को फोन कर दे।
0: अच्छा।
4: भाभी राहुल विकी तुम लोग इसे लेकर पीछे बैठो, मंजू तुम बेटे बहू को संभालना।
0: अच्छा बाबूजी।
4: घबरा गई होगी, हम लोग इसे लेकर अस्पताल तुरंत जा रहे हैं।
0: ठीक है बाबूजी। भाभी ताई जी संभालिए भैया को। भाभी भाभी ये क्या आप रो रही हैं? भैया ठीक हो जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है भाभी, ये लीजिए पानी पी लीजिए।
5: नई जिंदगी की शुरुआत, वो भी इस ढंग से। मंजू जी क्या हो गया आपके भैया को? क्या इसकी वजह मैं हूँ या फिर ऐसे दौरे इन्हें पहले भी पड़ चुके हैं? सच बताइएगा मंजू जी, आपको मेरी कसम।
0: सच ही बोलती हूँ भाभी, मेरे भैया जन्म से ऐसे नहीं हैं।
5: तो फिर?
0: बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, हर इम्तिहान में टॉप करते थे, इतनी छोटी उम्र में अच्छी नौकरी भी मिल गई, बाहर भी घूम आई हैं। लेकिन अचानक ही हमारे परिवार में एक ट्रेजेडी हो गई।
5: ट्रेजेडी?
0: हाँ भाभी, मेरे सबसे बड़े भैया का स्कूटर दुर्घटना में देहांत हो गया। भैया उन्हें बहुत प्यार करते थे और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, 10 दिनों तक ना सोए और ना ही किसी से बात की। उसके बाद ही पहला अटैक पड़ा, इलाज किया गया, ठीक हो गए, मेहनत की और नौकरी भी मिल गई।
5: वहाँ ठीक रहते हैं?
0: हाँ भाभी, ऑफिस में बड़ी तारीफ करते हैं लोग उनकी, काम भी बहुत करते हैं।
5: और

0: चिल्लाती रहती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वैसे ठीक रहती हैं, तभी तो उनका ब्याह किया गया है। भाभी आप क्यों चिंता करती हैं? अरे अचानक ही दौरा पड़ गया होगा, 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएंगी। अच्छा अब आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ।
1: नहीं मंजू जी अभी भूख नहीं।
0: तो लेटकर सोने की कोशिश कीजिए, मैं अभी आती हूँ, शायद बाबूजी आ गए हैं।
1: कितनी सुंदर जगह ब्याह किया है अपनी लाडली बेटी का। रईस घराना, शानदार हवेली, 4-5 गाड़ियां, ढेरों नौकर चाकर और एक प्यारा सा पागल पति। अरे टेटी, इससे अच्छा होता अगर आप मेरा गला घोट देती। जीते जी मुझे मारने की क्या जरूरत थी टेटी? रीमा, रीमा तो सच कहती थी, इस चंदन वृक्ष से संघर्षों के सर्प लिपट गए हैं। बड़ा डर लग रहा है मुझे।
0: भाभी सो गई मेरी भाभी, कैसा निश्चल भोला चेहरा है, कुछ घंटों में ही कुंभला गया है। किस सम्मोहन ने बांध दिया है मुझे इस मासूम ने, मुझे ही कुछ करना होगा। लगता है बाबूजी आ गए हैं। भगवान भैया ठीक हो गए हूँ। बाबूजी क्या हाल है भैया का?
2: क्या बताऊं बेटे, बहुत ही वायलेंट हो गया था।
0: हैं?
2: हाँ, अगर सावधानी ना बरती जाती तो शायद शायद वो नर्स का कला ही खोल देता।
0: बाबूजी?
2: हाँ, उसे इंजेक्शन देने जा रही थी और वो इंजेक्शन बड़ा ही कष्टदायक था बेटा। हे भगवान, ये किस पाप की सजा दे रहा है मुझे?
1: पाप क्या होगा बाबूजी?
2: क्या कह सकता हूँ मैं, फिलहाल तो इंजेक्शन देकर सुला दिया गया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। राजेश बेटा।
3: जी बाबूजी।
2: कल सुबह सब जगह फोन करके डिनर कैंसिल करने की सूचना दे देना।
0: लेकिन बाबूजी भाभी के मायके वाले ट्रेन से आ रहे हैं, चल ही दिए होंगे। बाबूजी भैया की शादी करके आपने ठीक नहीं किया।
2: उस समय तो ठीक था बेटा, डॉक्टर की राय से ही तो सब कुछ हुआ था।
0: उन्होंने तो ये भी कहा था कि शादी से ठीक भी हो सकते हैं और बीमारी बढ़ भी सकती है, इसमें रिस्क है। हम सब ने आपसे मना भी किया था बाबूजी।
2: अरे बेटे की मोहब्बत को तुम लोग क्या समझोगे?
0: ठीक कह रही हैं आप, उसके लिए एक क्या कई सुमी की जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है।
2: मंजू, मंजू,
0: अगर आपकी बेटी के साथ भी यही होता तो?
2: चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, जो मुंह में आता है पक देती है।
0: सच कह रही हूँ, इसलिए आप सहन नहीं कर सकती। कितनी मासूम लड़की है, उम्र में भी मुझसे छोटी, उसकी सिसकियां, उसका रोना, उसका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके लिए भी तो कुछ सोचिए बाबूजी।
2: अब तो बस एक ही उपाय है बेटी, शाम को उसके मायके वाले आ रहे हैं, सोचता हूँ उसे उनके साथ भेज दूंगा, शायद उसका वहां मन बहल जाए। जब रितेश ठीक हो जाएगा तो उसे बुलवा लूंगा।
0: ठीक है, मैं भाभी को मायके जाने के लिए राजी कर लूंगी। अब आप भी आराम कीजिए।
2: ठीक।
4: अरे आ गए आप लोग, सुमी भी आई है।

0: डिनर कैसा रहा? सुमी तू कुछ बोलती क्यों नहीं? ये रितेश कहाँ है?
1: मम्मी प्लीज, ये सब बातें एक ही साथ पूछ लेंगी। सुमी बहुत थक गई है, उसे आराम करने दीजिए।
0: अरे क्या हुआ सुमी? अरे तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? देखू तो? हाँ, अरे तुझे तो बड़ा तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। सुमी चल तू अंदर लेट जा बेटा। अरे जाना जल्दी से डॉक्टर को ले आ।
1: अरे हाँ बुलाता हूँ, आप उसके पास बैठिए।
2: चंदन
0: बेटा
2: छोड़ दो
0: बेटा, क्या हो गया मेरी सुमी बेटी?
1: हाय डॉक्टर साहब, देखिए कितनी तेज बुखार है।
0: हाँ देखिए डॉक्टर साहब, कितना तेज बुखार है।
3: इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए, मैं देख ही लेता हूँ। अरे भाई इसको तो बुखार है। ऐसा करता हूँ मैं इसे एक इंजेक्शन फिलहाल लगा देता हूँ, और ये दवाएं आप बाजार से मंगवा लीजिएगा, चार चार घंटे पर देते रहिएगा, सुबह तक बुखार उतर जाएगा।
0: ठीक है ठीक है,
3: और घबराने की कोई बात नहीं है।
0: ठीक है जा बेटा दवाएं ले आ।
1: थैंक यू डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। सुमी सो गई है मम्मी, आप उस कमरे में चलिए, डैडी यहाँ बैठ जाएंगे।
0: ठीक है,
1: आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, आइए।
0: हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है?
1: मम्मी हमें धोखा दिया गया है।
0: धोखा? कैसा धोखा?
1: हाँ मम्मी धोखा, वो बात यह है कि रितेश को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। कई महीनों तक वो मेंटल हॉस्पिटल में भी रहा, वो तो कल शाम को ही फिर से उसे दौरा पड़ा, अब हॉस्पिटल में।
0: अच्छा,
1: उसके ड्राइवर ने हमें सब कुछ बता दिया मम्मी, नहीं तो हम तो धोखे में रहते।
0: नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भगवान ये सब क्या हो गया? अब क्या होगा राकेश, मेरी मासूम बच्ची सुमी, ये क्या?
1: देखिए मम्मी इस तरह घबराने से कुछ काम नहीं चलेगा। मैंने और डैडी ने तय कर लिया।
0: क्या?
1: कि सुमी अब वहां नहीं जाएगी। रितेश वायलेंट हो जाता है मामा, तो जान पर भी हमला करता है। अब हम सुमी को नहीं खोना चाहते, हमें एक बार सुमी ठीक हो जाए तो उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए भेज देंगे, रीमा उसकी केयर करेगी, और रही ससुराल वालों की बात तो उनसे हम निपट लेंगे।
0: अच्छा।
1: अब ठीक है मामा, आप सुमी के पास जाइए।
0: ठीक है।
2: वर्ष बीत गए अपने आप से लड़ते हुए। वाह सुमी चौधरी वाह, बाहर मुखौटा पहन रखा है एक गंभीर प्राध्यापिका का, लेकिन अंदर अंदर छटपटाती है भोली भाली सुमी। क्या अपराध था मेरा, क्या अपराध था? भाग्य ने दुख भोगने के लिए मुझे ही क्यों चुना? अगर रीमा और डॉक्टर राजन न होते तो क्या होता मेरा? मैं तो टूट चुकी थी, और मैंने उन्हें बदले में क्या दिया? रीमा को दुख और डॉक्टर साहब को तड़प। आखिर आखिर वो क्यों तप रहे हैं एक टूटे हुए इंसान के लिए? मुझे हर वक्त समझाते रहते हैं, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं?
4: अंदर आ सकता हूं?
5: ओ आप आइए आइए बैठिए ना। रीमा का कोई खत आया? कैसी है वो? और जीजा जी और बच्चे तो ठीक है ना?
4: सब ठीक है, तुम कैसी हो सुमी?
5: अच्छी हूँ। सुना है आप बाहर जाने वाले हैं।
4: यहां रहकर भी क्या करूंगा सुमी, एक बात कहूं सुमी?

0: जिंदगी अनिच्छा से जी जाए तो बोझ बन जाती है, हर लम्हा बोझिल हो जाता है। अभी वक्त है सुमी, ये घेरा जो तुमने अपने चारों ओर बना रखा है उसे तोड़ दो सुमी, आज आखिरी बार कह रहा हूं।
1: कैसे तोड़ दूं? ये दुनिया, ये समाज मुझे चीनी देगा।
0: समाज फिर वही समाज, क्या दिया है समाज ने तुम्हें? घुटन, तनाव और दुख, तिल तिल कर जलने के लिए छोड़ दिया है तुम्हें, और लोग भी जल रहे हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या? हार गए हैं हम भी, क्या मिलेगा शिलाओं से टकराने से? चलता हूं, गुड बाय सुमी।
1: राजन,
0: सुमी
1: रुक जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बहुत थक गई हूं।
0: सुमी
1: और अचित हो।
0: ओ सुमी, मैं जीत गया, सुमी मैं जीत गया, शायद चंदन से सांप हट गए हैं
1: और बिखर गई है मादक गंध।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक चंदन वृक्ष। इसकी लेखिका थी उषा सक्सेना, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।

0: 1984 दुनिया
1: तू चांद नगर की शहजादी मैं इस धरती का बंदा
0: 1985 जमाना
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए
0: क्या 1993

बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पांचवा भाग। बीते चार

0: हफ्तों में रमेश तलवार ने एक से बढ़कर एक घटनाएं सुनवाई हैं। जाहिर है कई श्रोता भूल गए होंगे या कई नए श्रोता शामिल हुए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि पहले एपिसोड में रमेश तलवार ने कौन सी रोचक घटना सुनाई थी। तो चलिए बीते चारों एपिसोड्स में से कुछ दिलचस्प वाक्य दोहराते हैं और उसके बाद सुनते हैं आगे की बातचीत। ये है रीकैप एपिसोड 1।
1: जब पार्टीशन हुआ तो हम आए श्रीनगर में। उसके बाद जो है कुछ दिन सेट होने के बाद कुछ रिश्तेदार बम्बई आ गए थे ऑलरेडी, तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को फोन किया कि आपके लिए भी एक ट्रक खरीद लिया है। यहाँ कोलीवाड़ा में जहाँ हम थे
2: जी,
1: तो वहाँ पे ये मिलिट्री के क्वार्टर्स थे कुछ
2: साइन में,
1: साइन कोलीवाड़ा। तो हमारा जो कमरा था उसका नाम था T157
2: जी।
1: तो टी मतलब होता है टट्टी,
2: अरे
1: ओरिजिनल टट्टी थी वो।
2: ओ गॉड।
1: तो उसको लेवल करके सीमेंट करके घर बनाया गया और कुलदीप जी शुरू से ही म्यूजिक के माहिर थे, गाते बहुत अच्छा थे, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रॉफी जीत के आ जाते थे। कोलीवाड़ा में भी कोई प्रोग्राम होता था, दिवाली आई, होली आई, कुछ आया, ये गाते थे और खूब रंग जमाते थे। मैं जब नाटक वाटक करने लग गया, छोटे छोटे रोल मिलने, तो मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा करता था
2: जी
1: कि फलाना नाटक, किसी नाटक का नाम लिखता था, डायरेक्टेड बाय रमेश तलवार, म्यूजिक बाय कुलदीप सिंह, ऐसा लिखता था।
2: जब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है
1: ना वो कुछ करते नहीं थे वो, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता था। उन्होंने भी कई बार नाम पढ़ा और वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा उनके दिल में ये आ गया कि यार ये मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहता है। और इसी दौर में एक फिल्म की है, पता चला कि एक फिल्म बन रही है डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर, वो है उसका नाम है सौतेला। तो मुझे उसके रोल के लिए ले जाया गया, कुछ छोटा मोटा टेस्ट लिया और मैं सिलेक्ट हो गया और मद्रास एवीएम में जो है उसकी शूटिंग थी।
0: एपिसोड 2 में रमेश तलवार ने ये दिलचस्प घटना बताई थी।
1: तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तफाक एक फिल्म बनेगी, एक महीने में कंप्लीट हो जाएगी और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त,
2: बिल्कुल।
1: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृष्ण साहब से, कि वहां चलते हैं, ये पिक्चर है, मुझे असिस्टेंट रख लेंगे, एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरेगी आंख से, तो मैं काफी
2: आगे
1: चलूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बी आर चोपड़ा सर ने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो। मनमोहन जी, यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई, उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रखो यश अपनी पिक्चर में। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी 4 असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बी आर चोपड़ा ने कहा 5वां असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखेगा सब
2: जी।
1: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात, मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ,
2: Yes.
1: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म अच्छी फिल्म देखी हुई है 5 आने में, फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुरला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुरला एक आने का टिकट, वहां जाता 5 आने की पिक्चर, एक आने का खाना और एक आना वापस आना, ठन्नी में
2: काम बन जाता था।
1: काम बन जाता।
2: कौन कौन सी फिल्में देखी
1: सब होगी? कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो मैंने देखी है, बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में। अब था वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ प्वाइंट पूछा गया और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें, तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई, अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे यश चोपड़ा में नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया इसको जबरदस्ती 5 बार से रखकर कोने में बैठा साहब आगे चले। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए, मैं गया मिलने,
2: जावेद साहब ने,
1: जावेद साहब और सलीम साहब दोनों बैठे थे। तो मैं गया, बोलने लगे भाई एक प्रोजेक्ट है करेंगे आप, मैंने कहा जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूंगा, देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है आप सुन लीजिए
2: हाँ
1: फिर बोलिए, और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं, आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा, मैं ऋषि कपूर के साथ उन दिनों बहुत फिल्में कर रहा था।
2: हाँ बिल्कुल।

0: ऋषि कपूर इसमें होगा और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
1: वो भी आपके दोस्त।
0: तो अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिंपल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी
1: जी जी,
0: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में,
1: हाँ
0: तो पिक्चर को बिल्टअप मिलता है ये उनके जहन में था, और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त हैं। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद और दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है खराब हो चुका था, खराब मतलब सीरियस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी, मैंने कहा यार वही स्मगलिंग वही पुलिस और सिपाही, और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए।
2: तीसरे एपिसोड में रमेश तलवार ने सुनाई थी ये घटना।
0: करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में, वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
1: बाप रे,
0: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में, और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर, और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के, तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
1: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
0: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना,
1: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
0: लोग देखते हैं, नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है, लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही है ये सबसे हटके होगी,
1: बिल्कुल, और थी भी वो
0: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
1: बड़ी स्टारकास्ट,
0: स्टारकास्ट अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई।

0: रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत के चौथे एपिसोड में ये हिस्सा बड़ा ही दिलचस्प था।
1: तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है, उसने आइडिया सुनाया। उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था। तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ, लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे। नया न्यू कमर था राइटर,
0: जी जी जी,
1: उन्हीं का नाम है राइटर, है राइटर, स्टोरी राइटर उनका नाम ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है। तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए। बोला बहुत अच्छा, अगर सागर सरदी कर ले। तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलिस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
0: हाँ।
1: तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया।

0: तो चलिए अब सुनते हैं आगे की बातचीत, जिसमें हमने रमेश जी से रंगमंच की उनकी गतिविधियों के बारे में पूछा है।
1: अच्छा, अभी आखिर में कुछ ऐसे नाटकों की बातें करना चाहता हूं जो आपने सेलिब्रिटीज के साथ किए हैं, जैसे शबाना आजमी के साथ नाटक किया है, जया भादुड़ी के साथ, जया बच्चन के साथ नाटक है, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ है, जीनत अमान के साथ है।
2: जी, सबसे पहले मैंने पूजा भट्ट के साथ किया नाटक।
1: खूबसूरत
2: खूबसूरत। पूजा भट्ट के साथ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई प्ले कर रही है वो, और कोई और डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, कोई कर रहे थे। तो वो डायरेक्टर गुरु टाइप के थे, तो उन्होंने डांटा वांटा ये किया, तो ये कुछ आपस में अनबन हो गई उनकी। तो मेरे ख्याल में बोनी कपूर ने कहा रमेश जी को पूछ लो, तो मेरे पास कोई आया जो भी ऐसा है करोगे, बाहर अमेरिका में टूर है ऐसा। तो मैंने कहा कौन सा प्ले है, उन्होंने प्ले बताया, प्ले स्क्रिप्ट बताई और मैंने वो सुनी और मुझे लगा कि प्ले बहुत अच्छा है। अच्छा है प्ले, तो बहुत अच्छा था। और उसमें कोई और आर्टिस्ट कर रहा था रोल पहले, जो मुझे लगा मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा। पूजा भट्ट के संग बाप का रोल कोई और कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस एक्टर।
1: जी जी।
2: मैंने कहा ये जो इधर टेंटरम दिखा रहे हैं हमको, जो कुछ बातें वो करते थे ऐसी, ये नहीं हो रही होगा, ये नहीं होगा, मेरे नाटक में नहीं होता।
1: जी जी जी।
2: मैं आपके सिनेमा में बात सुन सकता हूँ।
1: जी,
2: नाटक में अमेरिका में बैठे तो मैं क्या करूंगा। तो वो मैंने कहा भरत कपूर को ले लेते, मेरे नाटकों में सब में काम करता है वो, और तुम्हारा फादर बिल्कुल लगेगा और मेरे कंट्रोल में। तो उस आर्टिस्ट को मैंने कह दिया भाई तुम्हारे ऐसी प्रॉब्लम है, शूटिंग डेट्स होती है, फलां होता है, ये होता है, वो होता है, नाटक में ऐसा नहीं होता, तो तुम अगर ना करना चाहो तो। उन्होंने कहा हाँ मैं नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम जितना है मैं वही दूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। वो मैं भरत कपूर को मैंने सुनाया सब्जेक्ट, उसने कहा मैं कर लेता हूँ। फिर पूजा भट्ट के साथ हम वहाँ गए, वहाँ उसके 5-6 शो हुए अमेरिका में, यहाँ आके 4-5, फिर 5-6 शो यहाँ पे किए, मतलब मेरे ख्याल मुश्किल से 10-12 शो किए थे हमने उसके।

0: शबाना आजमी वाला प्ले
1: नहीं, इसके बाद हमने पहले ये, इनके बाद जिया जी के पास गए हम।
0: जी जी,
1: मेरे पास मेरा दोस्त संजय गोराडिया आया।
0: जी,
1: संजय गोराडिया गुजराती का बहुत फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर है और एक्टर भी है, और वो मेरे साथ शुरू में मेरी फिल्मों में प्रोडक्शन भी करता रहा। सागर साहब के साथ बाजार में प्रोडक्शन असिस्टेंट था सागर साहब का, और फिर वो मैंने एक बनाई थी NFDC के लिए पिक्चर, तेरा नाम मेरा नाम, न्यू कॉमर्स को लेके, उसमें भी प्रोडक्शन कर रहा था और एक आध रोल भी किया था। तो आया, उसने कहा मैं तुम जैसे पूजा भट्ट के साथ प्ले करके आए हो वैसा अगर मेरे लिए प्ले करो तो मुझे अमेरिका का टूर मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कौन सा प्ले करना चाहते हो? उसने प्ले का नाम बताया, ये वाला ये स्क्रिप्ट। मैंने कहा ये स्क्रिप्ट किसको शूट करती है, किसको करती है? जिया जी को करती है। और कौन है
0: जी
1: जो इसमें ठीक रहेगा? पहले जिया जी के पास पूछते हैं, अगर वो करने के लिए हाँ कर दें। और जिया जी के साथ मैं सीरियल कर चुका था उन दिनों, उनकी कंपनी का ABCL के लिए मैंने आरजू एक सीरियल किया था, 50 एपिसोड किए थे उसके। तो बड़े अच्छा रिलेशनशिप थी, बहुत इज्जत करती थी, मैं भी बहुत

0: जतन भी करता था। मैंने उनको बताया कि ऐसा मैं कर रहे, अगर आप फ्री हैं और आप करना चाहती हैं, अमित जी से भी बात कर लेती है, महीने का टूर होगा कहीं अमेरिका का अलग अलग सिटीज में। बोले सब्जेक्ट सुनाओ, मैंने सब्जेक्ट सुना, सब्जेक्ट उनको बहुत पसंद आ गया और उन्होंने कुछ कहा, ऑलमोस्ट हाँ है, फिर भी मैं एक बार अमित जी से बात कर। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रिहर्सल कितने दिन करेंगे, मैंने कहा ऐसे 6 हफ्ते होती है या 45 दिन होती है। बोले उसके बाद आप मेरी फैमिली को दिखाएंगे, अपने ओपिनियन लीजिए आप। मैंने कहा बिल्कुल, अमित जी को बुलाऊंगा, बच्चों को बुलाऊंगा, सब जो भी देखना चाहें और भी ऑडियंस में जिसको आप बुलाना चाहती है, मैं भी अपने लोगों को भी बुलाऊंगा, हम देख लेंगे। कमिट करने से पहले मैंने कहा डेटे कमिट नहीं हो तब तक मैं बेचूंगा नहीं, फिर वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा डेटों का, टूर का। बोले ठीक है। रिहर्सल हुई, हमने शो रखा भाईदास में, प्राइवेट शो जिसमें अमित जी भी आए और भी बच्चे भी आए, सब सबने, हमारे भी दोस्त फैमिलीज आई, सबने देखा, लोगों को प्ले बहुत पसंद आया। जब प्ले होने लगा था तो मेरे ख्याल में था कि इनके सामने हस्बैंड जो है अनुपम खेर टाइप का कोई आदमी हो, या अनुपम हो या कोई और इस तरह का आदमी होना चाहिए। उन्होंने कहा रमेश जी आप ही करिए।
1: अरे वाह।
0: उन्होंने मुझे थिएटर करते हुए देखा होता, मेरे प्लेस देखे हुए जब दिन में मैं एक्टर था, मुझे आप ही करिए कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा सा वो झटका लगा कि जिया जी के सामने मैं नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे आप, करिए आपने जैसा सुनाया ना वैसा ही करिए। तो जब पढ़ा था मैंने उनके सामने प्ले, तो मेरे रिहर्सल करनी शुरू हो गया और फिर हमने अमेरिका टूर किया और बहुत अच्छा हुआ। और इधर जो ट्रायल हुआ उसमें भी लोगों ने मुझे अप्रूव किया।
1: वाह वाह वाह।
0: उन्होंने कहा रोल मेन जया जी का, लेकिन आपका रोल भी बहुत अच्छा है, आप एकदम रिलीफ है प्ले में, आप जब जब आप आते हैं आपके एंट्री का इंतजार होता है, क्योंकि वो जया जी थ्रू आउट प्ले में और मेरा कभी कभी बीच में आता था मैं 3-4, तो सबने अप्रिशिएट किया और मैंने वो रोल कर डाला।

और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हुआ, अब जिया जी को भी पसंद आ गया थिएटर करना, वो प्ले सुपर डुपर हिट हुआ और इन लोगों को फीस जो उन्होंने मांगी वो मिली थी। उसके बाद दूसरा प्ले आया, वो मैंने इनको डॉक्टर मुक्ता प्ले सुनाया, उसमें भी वो मेन रोल था लेकिन सीरियस प्ले था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप ये रोल करिए जो हस्बैंड का रोल है। अगेन मेरा रोल बीच में ही है लेकिन लाफ्टर लाफ्टर आते हैं मेरे आने पर, ऑल्दो मैं कॉमेडियन नहीं हूँ लेकिन वो रोल ऐसा होता है कि मुझे लाफ्टर तो मिलते हैं। वो रोल भी, वो प्ले, फिर हम दोनों प्ले साथ लेके फिर अमेरिका टूर पे गए। अमेरिका से फिर गल्फ कंट्रीज भी गए, पहले लंदन गए, लंदन से गल्फ कंट्रीज भी गए। इस तरह हमारा 40 दिन का टूर हुआ, बहुत अच्छा रहा और सबको फीस अच्छी मिली क्योंकि बाहर प्ले में आपको मुंह मांगा दाम, जब आप स्टार प्ले करते हैं तो जो प्राइस स्टार बोलेगा उस हिसाब से पैसे मिल जाते, फिर डायरेक्टर को भी उस तरह मिल जाते हैं। इस तरह से हमको जब ये प्ले चल रहे थे तो एक दिन शत्रु जी से मुलाकात हुई, तो उन दिनों कुछ दिल्ली जाते थे और ये सब, तो उन्होंने कहा यार मैं तेरा प्ले देखा बहुत अच्छा था। मैंने कहा आप करेंगे प्ले? नहीं करूंगा, जरूर करूंगा। कब करना चाहोगे? कौन सी क्या स्क्रिप्ट सुनाओ। और उनको स्क्रिप्ट सुनाई और वो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड प्ले था जो उन्होंने सुना और वो प्ले अच्छा है, आज तक चल रहा है वो भी। और उसमें राकेश बेदी और ये और लड़की एक है और संजय गोरडिया एज प्रोड्यूसर, वो एंट्री भी मारता है कुछ शुरू में। तो चार ही कैरेक्टर है, मैं उसमें रोल नहीं करता हूँ। वो प्ले भी हिट हुआ, आज तक चल रहा है। उसके बाद जीनत जी किसी शो पे आई थी, अमित जी के ना इनके शत्रु जी के, उन्होंने दो तीन बार अटेंड किया था प्ले। उन्होंने कहा आपका मेरे लिए स्क्रिप्ट है? मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा वो देखिए बात यह है कि संजय गोरडिया से आप कमर्शियल बातें कर लीजिए, मैं आपको स्क्रिप्ट बाद में सुनाऊंगा। क्योंकि होता है ना कि बात कर लें फिर स्क्रिप्ट भी आप तक पहुंच गई, फिर उसके बाद मैं किसी और को सुनाऊंगा, आपको लगेगा आपका सब्जेक्ट किसी और को सुना दिया। उन्होंने कहा हाँ मैं कर लेती हूँ। उन्होंने बात जो भी मिशन प्रोड्यूसर और हो गया, उन्होंने हाँ कर दी। अब जब आया तो उन्होंने कहा आप रोल करेंगे, मैंने जया जी के साथ आपको रोल करते दोनों प्लेस में देखा है। मैंने कहा जी वहाँ जया जी की हाइट कम है, आपकी हाइट बहुत ज्यादा है। बोले आप 6 इंच के जूते पहन लो। और मैंने वैसे जूते बनाए, उनके ऑपोजिट रोल किया, वो हो गया। इतने में एक प्ले था शीशों का मसीहा, फैज अहमद फैज की पोइट्री के ऊपर उनकी कहानी, लाइफ कहानी थी, तो उसको जोड़ा हुआ था और

वो हमने प्ले खेला, शबाना जी ने हाँ कर दिया। मैंने पूछा जावेद साहब करेंगे, बोले तुम पूछो भाई मैं नहीं बोलूंगी। मैंने उनको सुनाया, उन्होंने कहा हाँ मैं करूंगा, पढ़ना है खाली ना, याद तो नहीं करने डाले, मैं पढ़ूंगा और पोएट लगूंगा मैं। तो उन्होंने भी ओके कर दिया। तो वो लेके हमने 5-6 शो इधर ही किए, लेकिन जो फिर वो उनके राइटर्स उस प्ले के, वो चाहते थे कि वो रोल करे खुद। तो मैंने कहा भाई अब ये तो प्ले चल गया है, अब तो वो करते हैं, मैं उनको थोड़ा बोलूंगा तो आप छोड़ दीजिए प्ले, शबाना जी को ये थोड़ा करूंगा कि अब आपके साथ ये करेंगे। तो उन्होंने कहा मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे सकता, राम सिंह राइटर ने। शौकत भाभी ने अपनी आप बीती लिखी, तो टाटा एक्सपेरिमेंटल थिएटर में उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा उसका स्टेज पे, पढ़ा तालियां बज रही हैं, ये और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप वो किताब पढ़िएगा। तो जैसे ही खत्म हुआ चैप्टर, मैंने कहा शबाना इस पे हम प्ले करेंगे, क्या बात करते हो? मैंने कहा आप उसमें रोल करेंगे यही वाला जो शौकत भाभी ने किया है, और अगर जावेद साहब करना चाहे कैफी साहब का रोल तो जावेद साहब को दे दे, आप दोनों का पेयर भी हो जाएगा सेम, आप लोगों ने दोनों साथ में किया हुआ है, तो कैसे तुमको लगता है कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा अच्छा बनेगा? मैंने कहा उसमें बीज सारे हैं, मैंने आपका तुम्हारी अमृता भी देखा है, उसमें भी आप बैठ के दोनों पढ़ते थे फारूक और आप, शीशों का मसीहा भी किया है हमने, और ये भी है, बहुत अच्छा बनेगा। तो फिर एक काम करिए, जावेद साहब से कहिए लिखे। मैंने कहा जावेद साहब को आप कहिए। बोल रहे मैं नहीं कहूंगी, मुझसे ना करेंगे तो फिर मैं क्या करूंगी, आप अपने ढंग से आपने काम किया हुआ है ना उनके साथ, तो आप उनकी स्क्रिप्ट फिल्में बना चुके हो, कहिए। तो फिर मैंने जावेद साहब से कहा कि आप ये स्क्रिप्ट लिखिए। तो जावेद साहब ने स्क्रिप्ट लिखी और रोल किया, और प्ले तब से लेकर आज तक चलता है। अभी जावेद साहब ने खुद बिजी हो गए, तो उन्होंने कहा रमेश जी अभी आप ना मुझे रोल के लिए मत बोलिए, क्या होता है मुझे आप लोगों के साथ डेटें मैच करने पड़ती है शबाना की और वो, तो आप किसी और भी, तो आप कमलजीत सिंह करते हैं रोल, वो सेम रोल, और अभी हम टूर करते रहते हैं, अभी भी ऑफर आई हुई है, जाएंगे बाहर।

0: अमित जी, बहुत बरस तक फिल्में डायरेक्शन किया आपने, टेलीविजन पर काम किया, और उसके बाद फिर एक बहुत लंबा अरसा है जहां आप वापस थिएटर की तरफ लौट रहे हैं, और मैं आपके प्लेस देखता रहा हूं। आप थिएटर को जीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो एक जुनून है आपका। अपने सबसे लंबे समय से चले आ रहे प्लेस और इन दिनों जो कुछ नाटक आप करें उनके बारे में बताइए।
1: देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि मैंने फिल्में करना बंद नहीं किया। मैंने लास्ट फिल्म बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए, जिसमें रेखा जी और शत्रुघ्न सिन्हा है, उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उनकी मिसेज और एक उनकी पार्टनर है कोई, दोनों ने मिलके, और फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है। अब वो कैसे रिलीज करेंगे वो अब देखते हैं, OTT पे करते हैं या क्या करना चाहते हैं। और उनके साथ नाटक भी मेरा चल रहा है, उसके भी शोज करते रहते हैं। तो इप्टा में जो नाटक मेरे हैं जो बहुत देर से चल रहे हैं, एक तो शतरंज के मोहरे
0: सबसे पुराना है।
1: मतलब ये था कि मैं जब पहली बार शतरंज के मोहरे करने लगा था, उसमें मैं बच्चा था और चेहरे से लगता था कि 14-15 साल का है, और मुझे लव सीन करना होता था। 20 साल का रोल है श्याम का, उसमें कैरेक्टर का नाम श्याम है, तो मैं मुंह चुगाता था रोल करने के लिए कि मैं बड़ा लगूं, और मेरे सामने जो एक्ट्रेस होती थी वो अपना सुलवार या हिंदी में या कहीं और दूसरी जगह कोई नॉन एक्ट्रेस ऐसा रोल करती थी, तो मैं बड़ा लगना चाहिए। और उस वक्त जब मैंने पंजाबी में पहले प्ले किया, उस वक्त मनमोहन कृष्ण जी एक मेन काका जी का बुजुर्ग का रोल कर रहे थे, चाचा का, और हंगल साहब करते थे रोल आचार्य का उसमें, और मैं शाम जो लड़का है उसका करता था, और बाकी रात में नितिन सेठी उस वक्त के हीरो थे, वो करते थे डॉक्टर सतीश का रोल, अचला सचदेव उनकी मतलब मेरी बड़ी बहन का रोल करती थी। ये यहाँ से शुरू किया था। अब जो साहब मैंने वो प्ले का हमको शो मिल गया हैदराबाद में, ऐसा हुआ कि एक प्ले कर रहे थे आदर का ख्वाब, जिसमें बलराज सहनी साहब थे और गीता सिद्धार्थ, तो पिग्मिलियन पे था प्ले। तो उन्होंने कहा हमको दो प्ले चाहिए, तो हमारे पास दूसरा प्ले कुछ आ नहीं, तो हमने कहा ये जो पंजाबी में प्ले किया है इसको सब हिंदी में बोलना शुरू करो, तो देखते हैं कि कितना तक क्या चाहिए। वो बोलने लग गए सब लोग हिंदी में, सेम लाइन है, पंजाबी और हिंदी नजदीक नजदीक की है, सिंपल वैसे ही वर्ड रखे, क्लिश हिंदी नहीं होगी, सिंपल हिंदी होगी, वो बन गया। जब

0: तक पहुंच गए, फिर मैंने उसको फाइनल थोड़ा सा छोटा मोटा जो करेक्शन करनी थी कर ली। वो करके हम लोग जाके हैदराबाद में हमने शो खेला और तब से लेकर अब आज तक ये नाटक हिंदी में चल रहा है। अब मैं वो रोल मैंने बंद किया तो रमन कुमार करता था वो रोल, मैं कोई और रोल करने लग गया। रमन कुमार के बाद राकेश बेदी वो रोल करने लग गया, फिर राकेश बेदी बड़ा हो गया, वो 20 साल का नहीं लगता, बड़ा लगने लग गया, तो अब कोई और बच्चा नया लड़का करता है। और मैं अब वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता हूँ कभी कभी, और मैं जब राकेश बेदी अवेलेबल होता है तो वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता है, अगर वो नहीं अवेलेबल तो मैं करता हूँ।
1: वाह वाह,
0: तो वो प्ले आज तक चलता आ रहा है। दूसरा प्ले जो मैंने आपको पहले कहा कि ये प्ले जो आखिरी क्षमा जो कैफी साहब का लिखा हुआ है और जिसमें बलराज सहनी काम करते रहे, उसके बाद उस गालिब का रोल भरत कपूर करते रहे, अभी वो कंवलजीत भरत कपूर का रोल करते हैं गालिब का रोल, और अभी हमने 56 साल की ट्रॉफियां बांटी हैं उसकी।
1: जी जी जी, काबली वाला भी चल रहे हैं।
0: काबली वाला अलग है, काबली वाला का ऐसा था कि यही जब मैं शबाना के संग प्ले कर रहा था तो रिंकी भट्टाचार्य जी विमल राज की बेटी वो आई, परीक्षित सानी के संग आई थी, उन्होंने कहा कि रमेश तुम काबली वाला क्यों नहीं स्टेज पे खेलते। मैंने कहा काबली वाला एज इट इज तो नहीं खेला जा सकता, नाटक का वर्षन बनाना पड़ेगा वो करके, मैं फिल्म के ऊपर से ले लेता हूँ, आपके ओरिजिनल डायलॉग ओरिजिनल चीजें लेके एक स्क्रिप्ट बनाकर आपको सुना दूंगा। और परीक्षित सानी से कहा तुम रोल कर लो काबली वाला का, क्योंकि बलराज सानी ने रोल किया था। उन्होंने नहीं यार, मैं अभी अब हिम्मत नहीं है स्टेज पे काम करने, वो टाइम अलग था, अब नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने आसिफ शेख से कहा कि भाई ये है तो आसिफ शेख करता है वो रोल काबली वाला का, और वो नहीं होता तो विकास रावत कभी कभार करता।
1: मैंने देखा है, क्यूट प्ले है।
0: हाँ, बहुत अच्छा है। तो लेकिन वो तो ओरिजिनल फिल्म से लिया हुआ है।

0: स्क्रिप्ट जो बनाई है फिल्म से लेके बनाई है और उसका हमने एक वर्षन स्टेज पे क्या हो सकता है उतना करके जमा लिया अपना और चलता है, लेकिन बहुत लंबा नहीं है, 40 मिनट का ही है प्ले। तो उसके साथ मैंने एक बार जाहिदा हैना करके एक पाकिस्तान की राइटर है, उन्होंने काबलीवाला लौट आया इन्हीं कैरेक्टर को लेकर लिखा था और वो उन्होंने एक आर्टिकल सा लिखा, प्ले नहीं लिखा बता। तो मैं एज इट इज जब मेरा 40 मिनट का जिसको 2 घंटे पूरा चाहिए, तो मैंने तन्वी आदमी के संग सेकंड पोर्शन पढ़ने का रख लिया। अभी आपने देखा काबलीवाला जो एक्टरों के साथ अच्छे, ये सोलो पढ़ती है काबलीवाला लौट आया, तो जिसको 2 घंटे का होता है तो तन्वी आदमी करती थी। तन्वी आदमी अवेलेबल नहीं हुई तो राजेश्वरी सचदेव ने एक बात कर लिया, फिर लुबना सिद्दीकी ने एक बात कर लिया। पढ़ना है भाई, तुम रीडिंग एक दो बार मेरे साथ कर लो और स्टेज पे पढ़ो। वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है और ये उसके सारे बीज जो है काबलीवाला के लेके उन्होंने लिखा कि काबलीवाला जब उसकी बेटी पैदा, वो बच्ची जो बड़ी हो गई है, वो छोटी बच्ची बड़ी हो गया और वो डॉक्टर बन गई है और अफगानिस्तान में मरीज है आजकल और उनका इलाज करने वहां गई है। ऐसा लिखा, बहुत अच्छा लिखा हूं। तो वो पोर्शन हमने काबलीवाला हमारा चलता रहता है।
1: रमेश जी, बहुत ही विस्तार से अब बातें हुई हैं और बहुत दिलचस्प कहानियां आपने सुनाई अपनी जिंदगी की, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए।
0: आपका शुक्रिया भाई, ये अंदर की सारी बातें आपने निकलवा दी मेरे, ये मैं खुद भूल चुका था, अभी कई बातें याद कर रहा हूं, कुछ नाम याद नहीं आते हैं। अरे भाई उसका वो तो भी ये आपका ही वो था कि आपने आराम से सुना और इतनी देर तक सुना मुझे।
1: बहुत शुक्रिया सर।
0: शुक्रिया जनाब।

0: ये थी रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने पांचवा भाग सुना। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज उजाले।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आपको लैस भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

युवाओं के लिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि हम केवल शैक्षणिक डिग्री न ले बल्कि मानसिक रूप से स्वतंत्र और विवेकशील भी बने। हमारी एकजुटता यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हमें जाति और भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण के लिए एक साथ आना होगा, संघर्ष करना होगा। संघर्ष का अर्थ केवल लड़ाई करना नहीं।

0: स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश

गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र

0: वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसीदेवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने

के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओजुदबेक खालिमबेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आम्ही आपल्याशी बोलत आहोत आकाशवाणीच्या सोलापूर केंद्रावरून। मंडळी, रात्रीचे ठीक 9 वाजले आहेत।
4: सोलापूर मधील सिटी हॉस्पिटल, VIP रोड, जुना एम्प्लॉयमेंट चौक इथं अद्ययावत अतिदक्षता विभाग, मेडिसिन, स्वतंत्र स्त्री रोग प्रसूती विभाग आणि बालरुग्ण विभाग, बर्न केअर युनिट, ट्रॉमा केअर सेंटर, मेंदू व मणक्याच्या हाडाच्या आणि इतर सर्व प्रकारच्या शस्त्रक्रिया, नवीन मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर, 24 तास फार्मसी, रक्त तपासणी, एम्ब्युलन्स सेवाही उपलब्ध।
5: सिटी हॉस्पिटल, जुना एम्प्लॉयमेंट चौक, VIP रोड, सोलापूर। फोन 2315156।

0: साथी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार नौशाद।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

16 साल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल।

दोस्तों नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम आज समर्पित है जाने माने शायर और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को। दीवाना।

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई, ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

सन 1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार A.R. कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे K.L.

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरूह सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरू के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: प्रस्तुत करता रमेश गोखले। अब दीजिए राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जागने।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से और आपको लैस भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए।
2: FM वाहिनीच्या 103.4 मेगाहर्ट्सवर आकाशवाणीचं हे सोलापूर केंद्र आहे। मंडळी रात्रीचे ठीक 10 वाजले आहेत। आता प्रसारित करत आहोत गीत गाता हूं मैं गुनगुनाता हूं मैं हा कार्यक्रम। कार्यक्रमाचं संकलन, लेखन आणि निवेदन केलंय राजेंद्र कुमार कांबळे यांनी। सादर करते आहेत डॉक्टर सोमेश्वर पाटील।
3: हिंदी चित्रपटातील मनाला भुरळ घालणाऱ्या, हृदयस्पर्शी आणि विविध कालखंडात बदल झालेल्या नृत्य, गीत आणि संगीत यावर प्रकाश टाकणारा कार्यक्रम गीत गाता हूं मैं गुनगुनाता हूं मैं। संकलन, लेखन आणि निवेदन राजेंद्र कुमार कांबळे यांचं। सादर करते डॉक्टर सोमेश्वर पाटील।
4: गीत गाता हूं मैं गुनगुनाता हूं मैं।
5: गीत गाता हूं मैं गुनगुनाता हूं मैं या कार्यक्रमात मी राजेंद्र कुमार कांबळे आपलं सहर्ष स्वागत करतोय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक

0: में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि यह फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Health Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country.